0: hot in the next few days, apart from isolated showers tomorrow morning. And that's the weather from Metro Plus, your Connect.
1: Before buying a first-hand residential property, study the sales brochure, price list, and sales arrangements. Check mortgage details and total expenses. Assess affordability. Be cautious about verbal promises. Always ask for written confirmation. Sign the agreement for sale and purchase within 5 working days after signing the preliminary agreement, or else the deposit of 5% of the purchase price will be gone. Visit the Sales of First-Hand Residential Properties Authority website for more. It's my life,
2: it's now or never. Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
3: Life is for the living. You have to make the most of it.
2: On Family.
3: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
2: Life with drugs. No life at all.
4: Life. This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
5: Namaste, Sasri Akal, Salaam, Kidda, Ji Sare Vadiya, Appa Ji, Bahut Vadiya. Aaj hai Ji 22 May 2026, Hamare Paas hai kuch 6 announcement. To shuru karte hai Ji, Hamara show, Pehla announcement hai, Receive Regular Cervical Screening. Hong Kong में cervical cancer महिलाओं में बहुत common है. Regular screening से इसको रोका जा सकता है. अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और आपने sexual experience किया है, तो आपको regularly screening करवाना चाहिए. बहुत सी महिलाओं को HPV virus, जो cervical cancer का कारण है, होने पर या cancer के शुरुआती stage में कोई लक्षण नहीं दिखते. याद रखिए, अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, आपने HPV वैक्सीन ले लिया है या आप मेनोपॉज के बाद हैं, तब भी आपको सर्विकल स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है. अपनी स्क्रीनिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, वेमेन वेलनेस सैटेलाइट्स, फैमिली डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट या किसी एनजीओ के पास स्केड्यूल कराएं. डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग ले के लिए कॉल करें 3166-6631. और जानकारी के लिए, जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स में एचपीवी सेल्फ सैंपलिंग शुरू हो गया है. इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें. हांगकांग आइलैंड 2855-1333, कावलून 2855-1222, न्यू टेरिटरीज 2851-1722. ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट देखें www.cervicalscreening.gov.hk. Alright guys, बढ़ते हैं जी हमारे पहले requested गाने पर. ये anonymous ने request किया है. गाने का नाम है दिल, and the name of the singer is Nirvair Pannu. Enjoy the song.

एंड वेलकम बैक गाइस, आते हैं जी दूसरे अनाउंसमेंट पर। यह है एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट। क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहां से मदद और सलाह मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे हांगकांग में 10 जॉब सेंटर्स खोले हैं। यहां जॉब सीकर्स को बिल्कुल फ्री मदद मिलती है। किसी भी जॉब सेंटर में जाकर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वहां एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो। अपनी जॉब के ज़रूरतों के बारे में डिस्कस करो और उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करो जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं। ख़ासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स आपको एक स्टॉप सोल्यूशन देंगे पूरी मदद केस बाई केस अप्रोच से। लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज इंग्लिश और चाइनीज में हैं। अगर आप इंग्लिश या चाइनीज नहीं बोल पाते तो वो आपके लिए फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस अरेंज कर देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं www.jobs.gov.hk/em या इंटरएक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उसे यूज करें। ऑलराइटी, बढ़ते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। ये किसकी तरफ से आया है? लेट्स चेक दिस आउट। ओके, ये रवि ने रिक्वेस्ट किया है गाना। अर्जुन टिल्लो का गाना है ब्रैट्स, डेडिकेटेड टू जट विस्की सिंह, जट्टी फ्रॉम दिनसुवाई। या दैट्स इट। तो ये गाना एंजॉय कीजिए। दिस इज ब्रैट्स बाय अर्जुन टिल्लो।

And welcome back, guys. बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज लेबर राइट्स अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स. कुछ लोग गलत समझते हैं कि कम घंटे या कम दिनों वाली नौकरी करने वाले एम्प्लॉयज को लेबर लॉ की प्रोटेक्शन नहीं मिलती. ये एक गलत फहमी है. एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर आने वाले सारे एम्प्लॉयज, चाहे वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, और चाहे उनके वर्किंग आवर्स कितने भी कम हो, उनको बेसिक प्रोटेक्शंस मिलने का हक है, जैसे टाइम पे सैलरी मिलना और स्टैट्यूटरी हॉलीडेज. अगर कोई एम्प्लॉई कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस में दिए गए कंडीशंस पूरे करता है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे हॉलीडे पर और सिकनेस, हॉलीडे पे और सिकनेस अलाउंस. ज़्यादा जानकारी के लिए लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखें, www.labor.gov.hk. ओके, अगला गाना जो रिक्वेस्ट किया है सनी ने मनी के लिए, गाने का नाम है लाइम लाइट बाय हर्फ चीमा. सो एंजॉय द सॉन्ग.

And welcome back, guys. This is Prevention of Seasonal Influenza, COVID-19 and Other Respiratory Illnesses. इस सीजन में अलर्ट रहो, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, COVID-19 और दूसरे सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं. अपनी पर्सनल हाइजीन और घर परिवार की सफाई का ख्याल रखो. खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक को ढक लो. हाथ को लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकंड्स तक अच्छे से धो लो. अगर तबीयत खराब लगे तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से सलाह लो. गवर्नमेंट का 2025 और 26 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन

0: प्रोग्राम चल रहा है, हर साल फ्लू का वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। जो लोग एलिजिबल हैं उनको फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है। कोविड-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क वाले लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे रेजिडेंशियल केयर होम्स में रहने वाले, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के जो क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर लोग जो 6 महीने से ऊपर हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट पर जाएं, www.chp.gov.hk। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बढ़ते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। ये एक और सनी सिंह है जिन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट किया है, एंड गाने का नाम है नो मोर पेन बाय इकबाल जोविन एंड बी क्विंस। दिस इज डेडिकेटेड टू डॉलर सिंह फ्रॉम सनी वकार मनी लामा मिस ब्रो सी यू सून। चलो एंजॉय कीजिए ये गाना, दिस इज नो मोर पेन।
1: या ब्रो इकबाल ऑलवेज राइट ब्रो, सारे हालात नंगे होंगे मेरे वीरो ब्रो, टेंशन लैन की लोड़ नहीं ब्रो। या फट ते ब्रो निशानी होंगी मर्दा दी ब्रो, जंगा जितियां होंगे जिन्होंने मेरिया, हारे भी ये कोई गल नहीं ब्रो, इट्स नॉट मैटर ब्रो। हाय ब्रो नो प्रॉब्लम ब्रो, हसल करो ब्रो सारे जने ब्रो, मेहनत करो ब्रो। या
2: डोंट वरी ब्रो,
1: Yeah, yeah, yeah. Mainu pata mar wale tere ka. Well, always right.

And welcome back, guys. बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर. This is voter registration. Appeal for voter registration. अपने कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते आपको अपना सिविक राइट यूज करना चाहिए. वोटर बनने के लिए अभी रजिस्टर कीजिए. अगर आपकी उम्र 25 सितंबर तक 18 साल या उससे ज़्यादा है और आप हांगकांग के परमानेंट रेजिडेंट हैं और यहाँ रेगुलरली रहते हैं तो आप इलेक्टर रजिस्टर करवा सकते हैं. आप 2 जून तक अपना एप्लीकेशन इजीली आईएम स्मार्ट ऐप से कंप्लीट कर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म भरकर ईमेल, पोस्ट या फैक्स से भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं. फॉर्म आईएम स्मार्ट ऐप में vr.gov.hk वेबसाइट पर.

Okay, guys, coming to our very last announcement. This is the Working Family Allowance Scheme. Working Family Allowance Scheme, जिसे short में WFA कहते हैं, अब apply कर सकते हैं. ये household के नाम पर apply होता है और घर के सभी members Hong Kong residents होने चाहिए.

चाहिए। एक हाउस होल्ड अकेला रहने वाला भी अगर वर्किंग आवर्स, इनकम और एसेट की लिमिट्स पूरी करता है तो अलाउंस के लिए अप्लाई कर सकता है। एक महीने में एक से ज़्यादा जॉब्स के वर्किंग आवर्स को जोड़कर काउंट किया जाता है, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों। नॉन सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड के लिए अगर टोटल वर्किंग आवर्स 144 घंटे या उससे ज़्यादा हो तो वो बेसिक अलाउंस के लिए अप्लाई कर सकता है। 168 घंटे या उससे ज़्यादा हो तो वो मीडियम अलाउंस, 192 घंटे या उससे ज़्यादा तो वो हायर अलाउंस। हाउस होल्ड की इनकम के हिसाब से अलाउंस फुल रेट या थ्री क्वार्टर रेट या हाफ रेट मिल सकता है। फुल रेट है बेसिक अलाउंस 1150 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ, मीडियम अलाउंस है 1380 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ, हायर अलाउंस है 1610 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ। हर एलिजिबल बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाइल्ड अलाउंस भी मिल सकता है। फुल रेट है 1610 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ पर चाइल्ड। WFA ले रहे हाउस होल्ड को साथ में कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं मिल सकती। अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक के इनकम और एसेट लिमिट्स और पूरी डिटेल्स के लिए वेबसाइट देखें wfa.gov.hk। कोई सवाल हो तो 24 घंटे हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 2558-3000। ऑलरेडी बढ़ते हैं अगले गाने पर। दिस इज रिक्वेस्टेड बाय AB भट्ट, ये लिखते हैं प्लीज प्ले द सॉन्ग फॉर माय ब्रदर फारी वासी, मैसेज फॉर हिम, योर बट ब्रदर ऑलवेज स्टैंड बाय विद यू, प्लीज द सॉन्ग इज फॉर हिम, ही इज इन द जेल इन लाइचीकॉक। ओके, तो गाना जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो है पुत्त बगाने बाय लव ब्रार, सो एंजॉय द सॉन्ग।

0: And here is another song requested by Rajveer Singh. Hello, can you play my song for my brother? Song name is Nowadays by Khan Benny. Song is dedicated to Amrit and his friends. All right, guys, that's it for tonight. And we shall be live next week on Facebook. So you can send in your requests starting from now. वैसे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भाई मैसेजेस बहुत आते हैं हमारे हमारे पास हमारा इन फेसबुक का जो इनबॉक्स है एकदम भरा पड़ा है सो जस्ट बाय रिकॉर्डिंग दिस शो ओवर हियर ऑलरेडी लाइक 20-30 मैसेजेस आ गए हैं बिकॉज सबको मालूम है कि फ्राइडे को हमारा शो होता है तो फ्राइडे के दिन भी आते हैं और उससे पहले भी आते हैं सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू प्ले एज मेनी सॉन्ग्स एज पॉसिबल विद इन वन आवर आपको भी पता है कि ये होम अफेयर्स डिपार्टमेंट का चैनल है उनकी तरफ से जितने भी हम गाने लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं जी एक घंटे में और उनके अनाउंसमेंट्स भी हमने लगाने होते हैं सो वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ओह वन मोर थिंग प्लीज रिक्वेस्ट सॉन्ग्स जो कि साफ सुथरे गाने हो द सॉन्ग्स शुड नॉट हैव एनी फाउल लैंग्वेज एंड ऑल्सो शुड नॉट हैव एनी एक्सेस गन शॉट्स ठीक है ये ध्यान में रखना जब भी गाने रिक्वेस्ट करो ठीक है And yeah, that's it for tonight. I shall see you next Friday, same time, same place. Tab tak ke liye chill karo, tension na lo, jaldi kalaj raho. Rab rakha, good night and goodbye.
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.